नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर हुरमूज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार

अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुड मॉर्निंग सुप्रभात, नमस्कार और सभी का स्वागत है दोस्तों 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर। आरजे अंकित आ चुका है आपके साथ आपके अपने कार्यक्रम में, यानी सुहानी सुबह। जी हाँ दोस्तों, बारिश हो रही है और आपकी सुबह को सुहानी बनाने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, रहने वाला हूँ एक घंटे तक आपके साथ, यानी 8 बजे तक। और बात हो रही है सुहानी सुबह की, बात हो रही है आपकी सुबह को सुहानी बनाने की। तो दोस्तों, इस सुबह को सुहानी बनाने के लिए मेरे पास है ढेर सारे पुराने सुपरहिट गाने। जी हाँ, लेकिन जब सुबह की बात हो रही है तो सुबह सुबह दोस्तों न्यूज भी जरूरी है, तो मेरे पास है ढेर सारे न्यूज आपके लिए, खेल से जुड़े जानकारी भी है आपके लिए और साथ ही है इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, वेदर फोरकास्ट भी आएगा आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में इन सारे चीजों के साथ मैं हूं हाजिर आपके लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ढेर सारे गाने, तो चलिए शुरू करता हूं और दिखा देता हूं आपको एक एग्जांपल कि किस टाइप के गाने और किस तरह के गाने हैं जो आपके सुबह के मूड को बना देंगे। आइए सुनते हैं पहला गाना।

मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत। एस डी बर्मन का था, कंपोजिशन हसरत जयपुरी के थे बोल। और दोस्तों आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म तेरे घर के सामने से। आई दोस्तों अब आपको कुछ जानकारी दे दूं, न्यूज से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। बैंक हड़ताल 28 से 30 तक एटीएम शुल्क माफ। 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल के दौरान कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ग्राहकों को एटीएम शुल्क में राहत देने का फैसला किया है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक समेत कई पीएसयू बैंकों ने इन 3 दिनों में मुफ्त सीमा से अधिक एटीएम निकासी पर शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है। होमगार्ड वॉलंटियरों का दैनिक भत्ता बढ़ा। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन व कोलकाता होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत तैनात होमगार्ड वॉलंटियरों के दैनिक भत्ते में वृद्धि करने की घोषणा की है। होमगार्ड वॉलंटियर और होमगार्ड ऑफिसर्स की सभी श्रेणियों के दैनिक भत्ते में 110 रुपये की वृद्धि की गई है। और दोस्तों किसानों को बिजली खपत पर 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी। राज्य के 4 लाख से ज्यादा किसानों के हित में राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यहां प्रशासनिक सभा के मंच में बड़ा ऐलान किया। कहा कि उनकी सरकार राज्य के 4 लाख से ज्यादा किसानों को बिजली खपत पर प्रति यूनिट 2 रुपये की सब्सिडी देगी। पूर्व वर्धमान जिले ने प्रशासनिक समीक्षा सभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये के बजाय 9,000 रुपये की सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वह सारा धान खरीदेगी जो कृषक बेचना चाहते हैं और 2,700 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करेगी। दोस्तों ये तो थी कुछ जानकारी आपके लिए। बढ़ेंगे अगले गीत की तरफ, लेकिन अगले गीत से पहले दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक बनता है। जी हाँ दोस्तों, ले लेते छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटूंगा, सीधे आपको लिए चलूंगा हमारे कार्यक्रम के अगले गाने की तरफ। तो बस बने रहिए और कहीं मत जाइए। 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर आप सुन रहे हमारा कार्यक्रम सुहानी सुबह।

फिल्म चौधरी का चांद का टाइटल ट्रैक। दोस्तों आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में रवि का संगे शकील बदायूनी के बोल। आइए दोस्तों अब खेल से जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। शूटिंग में स्वर्ण व रजत ट्रैक पर गुलवीर की चांदी। एशियाई खेलों में शुक्रवार भारत के लिए उपलब्धियां से भरा रहा। निशानेबाज में कमलजीत व सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण दिलाया। ट्रैक पर गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर में रजत जीता। शॉटपुट में मनप्रीत कौर, मिश्रित टेबल टेनिस में दिया चिताले मानुषा और महिलाओं को पॉल वॉल्ट में बारनिका एलंगोवान ने कांस्य जीता। और वेस्ट इंडीज से पहले वनडे कल अभ्यास के दौरान गिल को कोहनी पर गेंद लगी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल जब शुक्रवार को अभ्यास सत्र के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की गेंदों का सामना कर रहे थे तो नेट पर एक ऊंची उठती हुई गेंद उनकी कोहनी पर जा लगी। गिल काफी दर्द में दिखाई दे रहे थे और उन्हें करीब 20 मिनट तक चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ी। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हालांकि नेट्स पर वापसी की और थ्रो डाउन का सामना किया जिसके बाद भारत में सत्र समाप्त किया। इससे कुछ मिनट पहले अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने साथ साथ लगे नेट्स में बल्लेबाजी की। दोस्तों खेल से जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब अगले गीत के बाद दोस्तों आज का इतिहास कर रहा आपके लिए वेट। जी हाँ, हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं आपको, तो कहीं मत जाइएगा, बस बन रहिएगा एफएम गोल्ड पर।

फिल्म सूरज से दोस्तों मोहम्मद रफी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत, कंपोजिशन शंकर जयकिशन की, लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी की। हाय दोस्तों, अब आपको आज के इतिहास के बारे में जानकारी दे दूं, यानी 26 सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ करता हूं रुख। 1087 में विलियम द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट बने। 1777 में अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश सैनिकों की फिलाडेल्फिया पर कब्जा किया। 1872 में न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना। 1950 में संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने उत्तर कोरिया के सैनिकों से सोल को अपने कब्जे में लिया। 1950 में इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की। 1959 में जापान के इतिहास में सबसे शक्तिशाली तूफान वेरा से 4,580 लोगों की मौत और 16 लाख लोग बेघर हुए थे। 1960 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच बहस की पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। 1984 में यूनाइटेड किंगडम हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत हुआ। दोस्तों, अभी और भी महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ रुख करना बाकी है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक गीत सुन लेते हैं ये गीत, और गीत के बाद दोस्तों मैं हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारियां करूंगा कंटिन्यू। तो बस बने रहिए एफएम गोल्ड पर।

0: किशोर कुमार की मधुर आवाज में दोस्तों आप सुन रहे थे ये ट्रैक आराधना से। दोस्तों बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और म्यूजिक डायरेक्शन था एस जी वर्मन का। आइए दोस्तों अब आज के इतिहास को करूं कंटिन्यू। 1998 की करता हूं बात, तो सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हिंस का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। 2001 में अमेरिका ने लादेन के बाद कश्मीरी आतंकवादियों से निपटने का भारत को आश्वासन दिया। 2002 में फ्रांस ने इराक पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया। 2004 में अमेरिका ने असैनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भारत को तकनीक देने का निर्णय किया। 2007 में वियतनाम के दक्षिणी शहर केंथो में एक निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त हो जाने से 62 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। 2009 में पूजा श्री वेंकटेश ने रश्मि चक्रवर्ती को हराकर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। 2009 में पंकज आडवाणी 76वीं नेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप बने। 2009 में फिलीपींस, चीन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में कैटसाना तूफान से 700 लोगों की मौत हुई। और 2011 में दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया। संयुक्त राष्ट्र ने विज्ञप्ति में कहा कि इस परिवहन प्रणाली ने शहर का प्रदूषण स्तर एक साल में 6,30,000 टन कम किया है। तो दोस्तों आज के इतिहास के बारे में तो आपको मैं जानकारी दे चुका हूं। अब अगले गीत के बाद आपको बताने वाला हूं 26 सितंबर को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 7:28 AM हो चुका है दोस्तों। आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है सुहानी सुबह आपकी अपने चैनल पर यानी 100.1 FM गोल्ड खारा सोना पर। और दोस्तों आप हमारे कार्यक्रम सिर्फ रेडियो सेट्स पर ही नहीं अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। सिर्फ करना होगा आपको एक छोटा सा काम, वो करना होगा कि आपको करना होगा एक ऐप डाउनलोड, न्यूज ऑन एयर प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप, और वहां करिए ट्यून हमारे चैनलों को और इंजॉय करिए बैक टू बैक हमारे कार्यक्रमों को।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

फिल्म शोर से दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में दोस्तों संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल से सवारा था संतोष आनंद ने। आई दोस्तों आपको बताऊं 26 सितंबर को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध समाज सुधारक शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी थे, उनका जन्म हुआ था। 1888 में T.S. इलियट नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकन अंग्रेजी लेखक का जन्म हुआ था। 1912 में मोहम्मद सलीम 16वीं लोकसभा में सांसद थे, उनका जन्म हुआ था। 1921 में सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक का जन्म हुआ था। 1923 में देवानंद फिल्म अभिनेता और निर्माता का जन्म हुआ था। और 1932 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका हुआ था जन्म। अगले गीत के बाद दोस्तों आपको बताने वाला हूं 26 सितंबर को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में।

फिल्म ममता से दोस्तों लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे गीत रोशन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। आइए दोस्तों आपको बताऊंगा 26 सितंबर को हुए प्रसिद्ध व्यक्ति के निधन के बारे में। 1842 में लॉर्ड वेलेसली सन 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, उनका निधन हुआ था। 1956 में लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति, तो उनका निधन हुआ था। 1958 में टी बी कुन्हा गोवा के स्वतंत्रता सेनानी, तो उनका निधन हुआ था। 1977 में उदय शंकर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के नर्तक, नृत्य निर्देशक और बैलेस निर्माता थे, उनका निधन हुआ था। और 1989 में हेमंत कुमार हिंदी फिल्मों के पार्श्वरे गायक और संगीतकार थे, उनका निधन हुआ था। अगले गीत का दोस्तों आपको बताने वाला हूँ 26 सितंबर के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में।

फिल्म ताजमहल से मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे गीत रोशन का संगीत शहीर के बोल। और दोस्तों 26 सितंबर को CSIR स्थापना दिवस मनाया जाता है और साथ ही विश्वमुख बधिर दिवस भी मनाया जाता है।

फिल्म मुगले आजम से दोस्तों लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत नौशाद का संगीत शकील बदायूनी के बोल। दोस्तों देखते ही देखते पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर। आइए अब आपको बताता हूं मैं मौसम का हाल। पहले बता देता हूं आपको पिछले 24 घंटों के बारे में। तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान था 30.6 डिग्री सेल्सियस जो कि सामान्य

0: 1.9 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान था 25.6 डिग्री सेल्सियस जो कि सामान्य से 0.4 डिग्री कम था। अधिकतम आपेक्षिक आर्द्रता यानी मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी 99% और न्यूनतम अपेक्षिक आर्द्रता थी 733%। 27.1 मिलीमीटर हुई थी वर्षा। आने वाले 24 घंटों में दोस्तों बादल छाए रहने की संभावना है। गर्जन तर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और मछुआरों के लिए भी दोस्तों एक चेतावनी है, अगले 6 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तट, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उसमें सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंकों आने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तट, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति अशांत से बहुत अशांत रहने की संभावना है। अगले 6 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वालों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तट, उत्तर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। तो उस मौसम का हाल भी हो गया। आइए बढ़ते हैं अब वापस से अगले गीत की तरफ।
1: लागा गोरी गुजरिया से

दोस्तों आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आवाज में ये गीत नौशाद का संगीत शकल बदायूं ने केवल। और दोस्तों एक जरूरी सूचना, डाक अदालत अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111 में गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसबी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतें समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेज सहित अपनी शिकायत एक डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल rmssbdn@gmail.com इस विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखे के माध्यम से अधीक्षक आरएमएसएसबी मंडल हावड़ा 711101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपनी ईमेल आईडी एक एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहक शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संचार 0332641595 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामले जैसे उत्तराधिकार आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से ठीक 11:10 पर इसी चैनल पर कार्यक्रम लो आगो इनकी याद लेकर। और अगला कार्यक्रम होने वाला इस गीत के बाद थोड़ी देर में आप लोगों के लिए, तो बस कहीं मत जाइए, बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सुना पर। मिलता हूं जल्दी आप लोगों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा

0: हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल

0: 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुँचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे। पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड। एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल। सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की।

0: रामप्रीत शर्मा सेट दैट द न्यू लेबर लॉज आर इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स।
1: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। जो नया कोड है उसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न प्रावधानों से अनुपालन की जटिलता कम करने की कोशिश की गई है और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर व्यवस्था भी

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मुद्दों, खाड़ी संकट और ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग पर चर्चा की। भारत ने इसी महीने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने भाग लिया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में सेवा यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी सवेरे कल 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्र, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों की एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह कदम गैर कानूनी है और इससे शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्सों की कमी और बढ़ जाएगी। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमरीकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित कर दिया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीम अपने अपने फाइनल मैच खेलेगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू से होगा। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र का विषय विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने लाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को पुनर्जीवित करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा शांति, गरिमा और समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना है। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित किया है। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा। और जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक अपने नाम किया है। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर काबिज है। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने पर 7 दिन में हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर खोलने का प्रस्ताव रखा। जापान एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। विदेश मंत्री

0: सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र का विषय विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाने, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने, शांति, सुरक्षा और समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर अलगाव और सुरक्षा, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्रिस्तरीय सत्र में ये बात कही। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की गई। सत्र के दौरान डॉ. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष में संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। इस समूह में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर भारत खाड़ी सहयोग परिषद की त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में वर्ष 2024 से 2028 के लिए भारत GCC संयुक्त कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें साझेदारी और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत GCC मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, नई प्रौद्योगिकियों, संस्कृति और जन आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में GCC के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर है। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय को दिए जा रहे समर्थन के लिए GCC नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता तथा नाविकों और वाणिज्यिक जहाज की सुरक्षा के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले एक चिंता का विषय है। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया, जिसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल व्यवस्था बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि बाढ़ का पानी भारत तक पहुंचा है। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुँचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन और जल संचय के कार्यान्वयन में जन भागीदारी का आह्वान किया, ताकि टिकाऊ और दीर्घकालिक परिणाम हासिल किया जा सके। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता 7 दिन के भीतर फिर शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही ईरान ने अमेरिका को ईरान के बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और ईरानी तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए कहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाहर पत्रकारों को इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ रुकी हुई वार्ता फिर शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जैसे ही अमेरिका इस योजना को स्वीकार करेगा, 7 दिन की समय सीमा शुरू हो जाएगी। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमरीकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B वीजा कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। एक रिपोर्ट।
1: महान्यायवादियों ने कहा है कि प्रस्तावित शुल्क से राज्य और स्थानीय संस्थानों के लिए कुशल विदेशी पेशेवरों की भर्ती करना और भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं में पेशेवरों की कमी का हवाला दिया। प्रस्तावित शुल्क नियम को वापस लेने के लिए अमरीकी नागरिकता और अप्रवासन सेवा कार्यालय को एक औपचारिक टिप्पणी पत्र भेजने में वर्जीनिया के महान्यायवादी जे जोन्स ने गठबंधन का साथ दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की 3 दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विदेश नीति पर चर्चा में प्रगति हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई बड़ा नया समझौता नहीं हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ उनकी बैठक सार्थक रही। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने पर 7 दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य फिर खोलने का प्रस्ताव रखा। जापान एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन दौड़ का रजत पदक जीत लिया है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हरा दिया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे

0: ले चिंता का विषय है। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाओ पर हमले का उल्लेख कर रहे थे। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हुई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी उल्लेख किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल पेशेवरों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वरचंद विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज फाइनल में भारत ने मध्यांतर तक 22-16 की बढ़त बना ली थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। External Affairs Minister S. Jayashankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jayashankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. External Affairs Minister S. Jayashankar met his counterparts from Iran and Russia, discussing a range of bilateral issues and cooperation in the BRICS grouping and the Gulf conflict. Mr. Jayashankar said that he met Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York and discussed bilateral issues as well as a number of the ongoing issues. Mr. Jayashankar also met Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi on the margins of the high-level UNGA session. They discussed the latest developments with regard to the Gulf conflict. India has welcomed the commencement of the Quad at Sea Ship Observer Mission, announced at the 11th Quad Foreign Ministers Meeting in New Delhi on the

गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर आरजे अंकित आपके साथ, और मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम लेके। लो आ गई उनकी यार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में मैं रहने वाला हूँ 12 बजे तक आपके साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारे कार्यक्रम इस पहले गीत के साथ।

फिल्म बचना है हसीनों से दोस्तों आप सुन रहे थे केके और शिल्पा राव की आवाज में ये गीत विशाल शेखर का संगीत अनविता दत्त गुप्तन के बोल। दोस्तों अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कार्यक्रम का सिलसिला रहेगा जारी, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पे अर्जय अंकित के साथ।

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,

0: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गए उनकी याद, लो आ गए उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गए उनकी याद, लो आ गए उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: दोस्तों ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर। सुबह के वक्त हो चुका है 11:19, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है लो आ गई उनकी याद, रहने वाला हूँ 12 बजे तक आपके साथ। और दोस्तों एक जरूरी सूचना, अगले 2-3 घंटे के दौरान झाड़ग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की बहुत संभावना है। और दोस्तों जैसा कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत में तो आपको नहीं बताया था कि आज लो आ गई उनकी याद हो किस पर रहा है, तो दोस्तों आज हो रहा है बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव के बारे में कर रहे हैं हम लो आ गई उनकी याद और सुना रहा हूं उन्हीं के गीत। और चलिए वापस लौटते हैं कार्यक्रम की तरफ और बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ आप लोगों के लिए।

फिल्म पठान से दोस्तों आप सुन रहे थे शिल्पा राव, कैरलिसा मोंटेरियो और विशाल शेखर की आवाज में ये गीत। कंपोजिशन विशाल शेखर की, लिरिसिस्ट थे कुमार। शिल्पा राव का जन्म दोस्तों 11 अप्रैल 1984 में हुआ था। एक भारतीय गायिका है, जमशेदपुर में जन्मी और पली बड़ी। राव 13 वर्ष की उम्र में मुंबई चले गई, जहां उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में मास्टर की पढ़ाई की। करने के बाद 3 साल तक सिंगल गायिका के रूप में काम किया। उनके कॉलेज के दिनों में संगीतकार मिथुन ने उन्हें अनवर के गीत जावेदा जिंदगी के गाने का पेशकश की, जो उनका पहला बॉलीवुड गीत हुआ।

फिल्म अनवर से दोस्तों क्षितिज और शिल्पा राव की आवाज में आप सुन रहे थे गीत मिठुन का संगीत हसन कमाल के बोल। 11 अप्रैल 1984 को जमशेदपुर में जन्मी शिल्पा राव का बचपन में नाम अपेक्षा राव था, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर शिल्पा राव कर दिया। उनके अनुसार वह शिल्पा नाम से अधिक संबंध रखती है, क्योंकि इस नाम का कला के साथ संबंध है। काफी कम उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उस समय उनके पिता एस वेंकट राव उन्हें गाना सिखाते थे, जिनके पास संगीत में डिग्री है। उन्होंने शिल्पा को अलग अलग रागों की बारीकियां को समझाया सिखाया, जिनके अनुसार उनके पढ़ाने का तरीका अक्सीमुक्त था और साथ ही बहुत प्रभावी भी था, क्योंकि शिल्पा की रुचि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। राव ने जमशेदपुर के लिटिल फ्लावर स्कूल और लॉयल स्कूल के प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जहाँ वह स्कूल क्वायर में शामिल थी। 1997 में वह अपने परिवार के साथ मुंबई चली गई, जहाँ उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया।

फिल्म जवान से दोस्तों अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत कुमार के बोल। 2004 में वो मुंबई चली गई और वहां सेंट जेवियर्स कॉलेज से अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में मास्टर की पढ़ाई पूरी की। महादेवन ने राव को कुछ लोगों के संपर्क बताए जिन्होंने जिंगल गाने में उनकी मदद की। राव ने उल्लेख किया कि मुंबई में काम शुरू करने के लिए जिंगल्स गाना शायद सबसे अच्छा तरीका था क्योंकि इससे उन्हें स्टूडियो के लोगों से बेहतर संपर्क बनाने में मदद मिली। उन्होंने 3 साल तक एक जिंगल गायिका के रूप में काम किया और इस दौरान उन्होंने कैनब्रिज मंच सन्स और कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स में उन्होंने गीत गाए।

0: फिल्म वॉर से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में आप सुन रहे थे। ये ट्रैक म्यूजिक डायरेक्शन विशाल शेखर का, बोल लिखे थे कुमार ने। दोस्तों शिल्पा राव ने कई बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन गाने गाए, जैसे कि अनवर में, धूम थ्री में, द ट्रेन में, गुलाब गैंग में, बचना है हसनू में, बैंग बैंग में, देवरी में और भी कई सारे फिल्मों में दोस्तों उन्होंने अपना बेहतरीन गीत गाया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

फिल्म ए दिल है मुश्किल से दोस्तों आप सुन रहे थे। ये गीत अमित मिश्रा शिल्पा राव की आवाज़ में, संगीत से सजाया था प्रीतम ने, बोल से सफारा था अमिताभ भट्टाचार्य ने। देखते देखते दोस्तों हम पहुंच चुके हमारे कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर

और आपको बताऊं अब उनकी पुरस्कार तथा नामांकन के बारे में। 2010 में पा के लिए मुड़ी मुड़ी के लिए नामित हुई थी, बजना है हसीनों के लिए खुदा जाने 2009 में भी उनका नॉमिनेशन गया था, 2020 में फिल्म वॉर के लिए घुंघरू के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो 2010 में फिल्म पा के लिए गाना मुड़ी मुड़ी के लिए नॉमिनेट हुई थी, 2009 में बचना है हसीनों के लिए गाना खुदा जाने के लिए नॉमिनेट हुई थी। स्क्रीन पुरस्कार के बारे में बात करें दोस्तों, फिल्म पा 2010 में मुड़ी मुड़ी के लिए नॉमिनेट हुई थी, 2009 में फिल्म बचना है हसीनों के लिए गाना खुदा जाने के लिए उन्होंने जीत हासिल की थी। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड्स के बारे में बात करें तो गाना दम दम के लिए 2014 में उन्होंने जीत हासिल की और 2012 में आई बिलीव के लिए उनका नॉमिनेशन गया था। भारतीय टेलीविजन एकेडमी पुरस्कार की बात करें तो 2011 में गाना बेकाबू के लिए उन्होंने जीत हासिल की और 2016 में ए दिले मुश्किल के गाने बुलिया के लिए उनका नॉमिनेशन गया था दोस्तों।

फिल्म द ट्रेन से दोस्तों मिठुन और शिल्पा राव की आवाज में आप सुन रहे थे गीत मिठुन का संगीत सईद कादरी के बोल। बढ़ेंगे कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ। आखिरी गीत होगा अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित लले का इजाजत। तब तक ले बाय, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी वीकेंड। सुनते रहिए, साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड। खरा सुना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये 3रा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल

0: India's 44-year wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilottama Sen, Vidarsaki Vinod and Ashi Choksi secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team event, scoring 1,763 points. In mixed double squash, Joshna Chinnappa and Vilvan Senthil Kumar won bronze. With these 4 medals, India are currently placed 12th in the medal standings and its overall tally has reached 27 with 3 gold, 11 silver and 13 bronze. Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र

0: सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की।

0: है।
1: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमरीका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों

के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन

और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को रखेंगे। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर 7 दिनों के भीतर वार्ता दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही ईरान ने अमरीका से ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी और ईरानी तेल की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटाने को कहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाहर पत्रकारों को बताया कि इस प्रस्ताव से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमरीका के साथ रुकी हुई वार्ता भी फिर से शुरू हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अमरीका के प्रस्ताव स्वीकार करते ही 7 दिन की समय सीमा शुरू हो जाएगी। श्री अराक्षी ने कहा कि शुरुआती चरणों को पूरा करने में करीब 4 से 5 दिन लगेंगे और 6ठे दिन हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोल दिया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। उधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। बरवाल को उनकी उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बधाई दी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: देखो देखो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरोपेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हिमालय क्षेत्र में आई विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ के बाद जलवायु लचीलापन तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के संबोधन में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देश उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति नेपाल की गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, इन्हें एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ अवैध निर्माण से जुड़े पुराने निर्देशों का पालन न होने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। उधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बिहार में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। पंजाब पुलिस ने आज फिरोजपुर में पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन और हथियार गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। फिरोजपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपिंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि पंजाब पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें एक चेकिंग प्वाइंट पर रोका गया था। मामले की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंचे लहरें उठने की आशंका के कारण आज से 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदिशा विनोद और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: स्वागत है आप सभी का 5:16:52 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता AIR FM गोल्ड 100.1 आपका खरा सोना। दोस्तों, कार्यक्रम चाइन क्लासिक्स में सबसे पहले आज की परियोजना प्रस्तुति।
2: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: आज की परियोजना प्रस्तुति में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की। हम सभी जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे PM पोषण योजना कहा जाता है, भारत सरकार की एक विशेष योजना है। इसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के माध्यम से बच्चों को विद्यालय में गर्म और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। भोजन में अनाज, दाल, सब्जियां और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों में कुपोषण कम करना, स्वास्थ्य सुधारना और विद्यालय में उनकी उपस्थिति तथा एकाग्रता बढ़ाना है। PM पोषण योजना केवल भोजन उपलब्ध करने तक ही सीमित नहीं है, ये बच्चों में समानता और सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। इससे उनमें सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित होती है। विद्यालयों में पोषण वाटिका जैसे प्रयासों के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन और प्रकृति के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाता है। PM पोषण योजना बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वस्थ और शिक्षित बच्चे ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज हमने परियोजना प्रस्तुति में बात की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की।
2: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: दोस्तों, इस वक्त

0: कार्यक्रम चाइन क्लासिक्स आप सभी के लिए पेश है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक आप सभी के संग। ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे बेहतरीन तरानों का ये कार्यक्रम चाइन एंड क्लासिक्स लेकर।
1: पर्सनल लोन ऑफर सर,
2: आबार एक्खुनी ब्लॉक करछी।
1: दुबई ए फ्री ट्रिप,
2: इटा के ब्लॉक करछी। আর কতগুলো নাম্বার ব্লক করব?
3: শুধুমাত্র ফোনে ব্লক করলে স্প্যাম কল আটকানো যাবে না, কারণ প্রতিবার সেটা আসে একটা নতুন ফোন নাম্বার থেকে।
2: তাহলে
3: কলটা আনসার করে ট্রাই ডিএনডি অ্যাপে রিপোর্ট করুন। ব্যাংকিং, ট্রাভেল, ইন্স্যুরেন্স থেকে একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে সাবমিট করুন। আর এই পুরো কাজটা করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগবে।
2: এর ফলে কি সবার জন্য স্প্যাম কল কমে যাবে?
3: হ্যাঁ, রিপোর্ট পাওয়া মাত্রই অ্যাকশন নেওয়া হবে। শুধু ব্লক না, রিপোর্ট করুন। ট্রাই ডিএনডি অ্যাপ আজকেই প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন এবং রিপোর্ট করতে শুরু করুন।
4: The car you're driving, your phone, all your gadgets, the appliances that run your home, as well as the rocket that's headed to space right now, and the guns at the nation's borders. Chances are, it's all fully desi now. One factory became four, then many more. Electronics manufacturing has multiplied 6 times, mobile phones by 32 times, and an 84% rise in exports in 12 years, we've stamped Make in India on the global value chain.
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
6: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स।
7: चाय और क्लासिक्स
6: 100.1 एफएम गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स।
7: चाय और क्लासिक्स
6: 100.1 एफएम गोल्ड पर।
7: एफएम गोल्ड पर।
0: दोस्तों, कार्यक्रम चाइन क्लासिक्स में मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती, और इस वक्त कार्यक्रम में हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये बेहद सुरीला तराना आनंद बख्शी है जिसके गीतकार और आर डी बर्मन है संगीतकार। गीत के बोल कांची रे कांची।

कार्यक्रम में अगला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। दिले नादान फिल्म के इस गीत को लिखा है नक्श यालपुरी ने और संगीत से नवाजा है खयाम साहब ने। सुनेंगे हम इस वक्त ये बेहद ही सुरीला तराना, सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम चाय और क्लासिक्स में।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चायन क्लासिक्स और इस वक्त एक जरूरी सूचना। डाक अदालत की ओर से अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल की अध्यक्षता में आरएमएस एसबी मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7 अक्टूबर 2026 को 12 बजे अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा, चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111101 में गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में आरएमएस एसबी मंडल से संबंधित आरएमएस सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ईमेल rmssbdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक आरएमएस एसबी मंडल हावड़ा 7111101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28 सितंबर 2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हो। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक से दूरभाष संख्या 0332641549 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस VC का लिंक यथा समय साझा कर दिया जाएगा। याद रखें, कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकार आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना यहीं समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चायन क्लासिक्स।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: दोस्तों, कहा था ना आपसे, कार्यक्रम चाइन क्लासिक्स एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपको सुनाते हैं हम यस्टरडे के बेहद ही सुरीला, रोमांटिक और ना भूलने वाले तराने। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे गीत है समंदर फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, और इस गीत को सुनते ही रुक करेंगे खबरों की ओर। हिंदी और इंग्लिश में न्यूज के बाद ठीक 6:10 पर फिर जुड़ेंगे हम FM गोल्ड पर कार्यक्रम चाइन क्लासिक्स में। मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती, और इस वक्त ये गीत ऐ सागर की लहरों।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता

0: के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पी सी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन-देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बाग चराजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
2: 6:12, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कोलकाता AIR FM गोल्ड 100.1 आपका खरा सोना में कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स। मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। कार्यक्रम में रहूंगी आपके संग 6:30 तक। तो दोस्तों, देर किस बात की है, बस एक और गीत आप सभी के लिए है नेक्स्ट, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में प्यार का दर्द है, दर्द फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: दोस्तों, कार्यक्रम चाइन क्लासिक्स में इस वक्त अपनी दोस्त भारती को दीजिए यहीं पे इजाजत। मुलाकात होगी आपसे फिर आज शाम 7:02 पर। लेकर आऊंगी कार्यक्रम जाने अनजाने, सैटरडे स्पेशल छाया लोग जाने अनजाने। आप सुनेंगे मुझे एफएम रेनबो पर ठीक 7:02 पर। जाते जाते आप सभी के लिए ये वादा रहा फिल्म से गुलशन बावरा के गीतों में सजे, और संगीत है आर डी बर्मन का, किशोर कुमार और आशा भोसले। कार्यक्रम चाइन क्लासिक्स में मैं थी आपके संग आपकी दोस्त भारती।

0: प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीटी कोड 011 भी डायल करें। चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ भाग ले रहे हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और पुनीत जैन। शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: A warm welcome to both of you.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
1: यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स ईरान 7-day प्रपोजल टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इंडियन स्टॉक मार्केट रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ बेयर्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव वीक। And Wall Street wraps up week with notable gains.
0: अमेरिका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खोले जाने वाले ईरान के 7-दिवसीय प्रस्ताव को खारिज किया। भारतीय शेयर बाजार पर लगातार 7वें सप्ताह मंदड़िये हावी और वॉल स्ट्रीट ने बढ़त दर्ज करते हुए सप्ताह का अंत किया।

0: inflation number in India is also going to be high. So that high frequency economic indicator, if we talk about India per se, that is also not a good news. So that is why I believe that coming 15 days or a month or so will not be so good in terms of Indian economy.
1: We are entering the holiday season, or rather the festival season, from October. What do you think? How will the markets take it? How will the economy take it?
0: That's the only good news which are coming, because when you have Navratri from 11th of October, of course we are going to have good purchase, but more purchase will come only in the month of November when we'll have Deepavali. So combination of these two festivals starting from October 11 to for the 9th November, I believe Deepavali is there. So 7th is the Dhanteras. So combination of these three will bring some cheers to the FMCG market, to the electronic market.
1: Hopefully.
0: Yeah. But the only concern at this moment is that the price rise, because many of the companies have indicated that they are going to increase the price. So that may dampen the sentiment. So I may be sounding very pessimist at this moment, but the reality is that the good news are very scarce to find.
1: So Puneet, inflationary trends coming up, as Shishi said, is worrisome.
2: Absolutely, Rajesh. And inflation is technically, it really kills demand. And that's what we've seen, in fact. If you, while you look at the numbers, the GDP numbers might be slightly higher. But it definitely dampens the mood for consumption. Going forward, like you mentioned, there's going to be festive season. We expect the demand to be better. But I think it will be below what most market expectations were. In fact, one of the first indications was the gold sales in this in the last few days, and we've seen a decline in gold sales because of higher prices. So clearly price is a mood buster as far as demand is concerned.
3: Is beech hamare sath Mumbai se Ratnakar jud gaye hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan, kripya apna sawal poochiye.
4: Hello
3: ji, apna sawal poochiye.
4: हाँ, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि अभी जो मार्केट में एआई रिलेटेड बहुत कॉम्पिटिशन, नहीं तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपील होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने में आदमी का कितना नुकसान नहीं तो फायदा हो सकता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा सवाल एक है कि अभी जो एकादा स्क्रिप्ट शेयर स्क्रिप्ट आईपीओ की इश्यू होने के बाद जब भी पहले लिस्टिंग होता है, अच्छा कंपनी का समझो लिस्टिंग हो गया, तो वो ग्लोबली रिनाउन होने के लिए कितना समय लगेगा, और तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो ग्लोबली ऑथेंटिकेट कैसे हो जाएगा?
0: देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है कि एआई रिलेटेड कंपनीज का, अगर आप बीते सप्ताह का देखें या उसके पहले सप्ताह में देखें, हमने दो तरीके का ट्रेंड देखा. एक बार हमने देखा कि जब जो एआई बेस्ड कंपनीज थी या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, उसमें बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि एआई को लेकर के जो दुनिया की कंपनियाँ, उन्होंने कहा था कि उसकी रफ्तार को कम करना है. और उसके पहले ये कहा गया था कि जो एआई कंपनीज हैं उनको अपनी सुविधाएँ विकसित करने के लिए आईटी कंपनियों की मदद की ज़रूरत है. तो इस समय मुझे लगता है कि एआई कंपनी को लेकर के उत्साह रखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए. आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये शेयर में लगाने के लिए है, तो आप 10 रुपये या 15 रुपये अगर आप एआई में लगाते हैं, और एक कहते हैं ना कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलें, तो वो बेहतर होगा. तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है. दूसरा आपका प्रश्न जो था, वो शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाए, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीओ के बाद जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको ग्लोबली रिकॉग्निशन होने में कितना समय लगता है. देखिए, ये कोई समय तय नहीं है. एक कंपनी अगर अच्छी है तो उसको वैश्विक स्तर पर या घरेलू स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए आईपीओ की ज़रूरत नहीं होती, उसे अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, उसे अपने सामान की ज़रूरत होती है, अपनी सेवाओं की ज़रूरत होती है. आईपीओ एक तरीके से निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश है, निवेशकों को एक उम्मीद जगा, मतलब निवेशकों के बीच एक उम्मीद ये देता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी. तो दो अलग अलग पहलू हैं, और कंपनियां, कई कंपनियां हैं अगर आप देखें आईटी क्षेत्र में, जो कि वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी अच्छा नाम कर रही हैं, और वो आईपीओ में भी उनको आए हुए काफ़ी समय हो गया, उनके शेयर प्राइसेस भी ठीक ठाक चल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई समय सीमा तय करें कि कितने समय में उनको वैश्विक ख्याति मिलेगी, शायद वो उचित नहीं.

0: में दोनों प्रमुख सूचकांकों में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.8% की गिरावट आई। बाजार में उतार चढ़ाव का संकेतक इंडिया विक्स सप्ताह के दौरान 6.7% बढ़कर 12.16 पर बंद पहुंच गया। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी लगभग 2.5%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.5% और निफ्टी एनर्जी में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी रियल्टी 3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और FMCG सूचकांकों में भी करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 6 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत, लगातार 7वें सप्ताह की गिरावट अगर हम देखें, किस दिशा में हमारा बाजार अब रुक करके बैठा है?
1: देखिए, जैसे शिशुर ने शुरुआती दौर में ही प्रोग्राम में बताया था कि 4 फैक्टर्स हैं इस वक्त जो बाजार को दबाव में ला रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जो वॉर का माहौल है, जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है भारत के बाजारों पर। US बॉन्ड यील्ड्स 5% से ऊपर चली गई हैं, उससे भी हमारे जो इनफ्लोज हैं, जो लिक्विडिटी है, वो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और चौथा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लगातार सेलिंग चल रही है। इस महीने भी करीब करीब 20,000 करोड़ का नेट सेलिंग FIIs ने किया है। और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि घरेलू बाजारों को देखें तो एक तो महंगाई, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, और जो एक तांता लगा था IPOs का, उसने भी काफ़ी लिक्विडिटी बाजार से करी है। जब तक ये फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, खास तौर से जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से क्रूड कच्चे तेल की कीमतों पर, उसी से इन्फ्लेशन पर, US बॉन्ड यील्ड, ये सभी उससे अफेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब माहौल बदलेगा तभी कोई बड़ी हम यहाँ से बदलाव देख सकते हैं। बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में लगातार 7 सप्ताह से बाजार गिरा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा यहाँ से पुल बैक हम देखेंगे और बाजार में शायद अगले सप्ताह हम थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं, बिकॉज वैल्यू बाइंग होगी डेफिनेटली। पर मुझे कोई सस्टेन्ड बाइंग या सस्टेन्ड अपट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये फैक्टर्स में बदलाव नहीं आएगा।
0: फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाहता था कि इस लगातार 2 साल से ये निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे? सर, ये तो बिल्कुल भी, हमें तो बैंक जो FD जो रिटर्न मिलता है वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा, नेगेटिव में जा रहे हैं जितने।
1: सुभाष जी नमस्कार, आप सही कह रहे हैं कि यदि हम पिछले 2 वर्षों का हम आंकड़े देखें तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिली है। हालांकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर है वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट आए हैं, लेकिन जो लार्ज कैप्स हैं और इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ और वर्षों जाएं, यानी हम अगर आप 5 वर्ष से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड थे, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स को वो काफ़ी रहे हैं। 9-10% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिली है। तो इसका जो मैं कहूँगा कि मैसेज है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म में मत घबराइए, ऐसा रहता है। हमने बहुत बार देखा है पिछले कई वर्षों में, 2-3 दशकों में हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी रिटर्न नहीं आती है। लेकिन यदि आप यहाँ बने रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे 4-5 वर्ष में या उससे ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न आएगी। और हमारे पिछले कई वर्षों के, अगर 40-50 साल के हम डेटा देखते हैं, तो ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अबव 5 ईयर्स, उसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगी। आप इससे परेशान न हो, आप मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहें तो बेहतर है।
3: Moving on, US stock markets ended higher yesterday, supported by gains in AI-related technology stocks. However, elevated crude oil prices and a recent surge in US Treasury yields kept investors on edge. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, while the S&P 500 and NASDAQ Composite rose 0.5% each. For the week, NASDAQ rose over 2% after it notched a record high close on Tuesday. The S&P gained 1.2% and the Dow added 0.3% over the week. Meanwhile, US President Donald Trump said he had a very productive meeting with Chinese President Xi Jinping following a 3-day summit that showcased personal diplomacy rather than major breakthroughs in economic

0: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली से कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: धन्यवाद।
0: जी, अपना सवाल पूछिए।
1: नमस्कार। हेलो।
0: हाँ, बोलिए। अपना सवाल पूछिए।
1: जैसे कि जीएसटी घटना के बाद कंपनियों ने अब क्या नई ट्रिक अजमाई है कि जो रेट थे वो कुछ उनके अपने एमआरपी बढ़ा दी है और वो रेट के रेट वैसे भी इनके वैसे ही चलते आ रहे हैं, ये कुछ चीजों में हमने चेक किया। दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे कि हमने पहले एक व्हाइट सोना खरीदा हुआ है तो ये इसकी जानकारी चाहिए कि व्हाइट सोने का रेट मार्केट से, में सुना है कि येलो सोने से महंगा है।
2: मेरे ख्याल से जीएसटी के मामले में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने कहा कि जो खुदरा मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको हम लोग एमआरपी के नाम से जानते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। देखिए, कंपनी के एक ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कच्चे सामान के दाम काफ़ी तेजी से बढ़े हैं, कच्चे माल के, और उसका असर आपकी कंपनी के अलग अलग उत्पाद हैं उनके ऊपर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ जिनके दाम जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन अगर फिर भी जो अध्ययन किए गए हैं उस अध्ययन में ये है कि जीएसटी की कटौती जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे उसके बाद दाम में जो कमी आई, अभी बढ़ोतरी तो हुई लेकिन वो कमी पूरी तरह से हम कहें कि खत्म हो गई है वो अभी उचित नहीं है, ये अध्ययन में सामने आया है, बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है वाइट गोल्ड का, मुझे लगता है कि आप प्लैटिनम का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये चर्चा होती है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखें कि अलग अलग गोल्ड की भी बात की जाती है, कहीं पिंक गोल्ड की बात की जाती है, ग्लो रेड गोल्ड की बात की जाती है, तो ये वो सोना है जो कि हम जिस गोल्ड मेटल की बात करते हैं, जिस सोना धातु की बात करते हैं वो ये नहीं है, ये मिश्रित धातु है। और वाइट गोल्ड एक अलग तरीके का, आप जैसे प्लैटिनम का, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि वो उसके दाम अलग हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है, और बाकी जो आप अलग अलग सोना देखते हैं वो सोना जो है वो मिश्रित धातु है, ये ध्यान रखें।
3: Global crude oil prices displayed mixed trend this week. Brent crude November futures rose 0.4% to settle at $104.32 per barrel. West Texas intermediate crude November futures tanked 3.8% to end at $92.41 per barrel over the week. However, oil prices eased over the last few trading sessions as markets grew hopeful of a phased truce between the US and Iran, with both sides reportedly in touch through mediators on the sidelines of the UN General Assembly meeting. Now, we read in the headline story about US rejecting Iran's seven-day proposal to reopen Strait of Hormuz. In such a scenario, Puneet, how should India be navigating the growing crude oil prices, especially if they continue to persist on a northern side?
4: So, Rajesh, clearly for India, the challenge is enormous, because not only do we have to contend with rising crude oil prices in the international market, we have limit, because we are the world's second largest importer of crude oil. So, clearly, we need very large supplies also. However, what geopolitical tensions are dictating to us, and particularly the latest trade tariff a threat by the US on imports from Russia, I think India has really its task cut out in a sense, because we need to import energy from Russia because there is no other large supply of energy like Russia, and therefore I think while we have we are looking at Brent crude about $100-$105, we really need to be cautious and going forward need to maintain supplies also to see that they are economic in nature.
0: शिशिर।

0: इस संदर्भ में अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर एक दबाव पड़ता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो या और भी कोई अन्य आपूर्ति की जो चीज़ें हैं जो हर देश को जिसकी ज़रूरत है, दबाव पड़ता है। ऐसे में किस तरह से हम आगे आने वाला भविष्य देख रहे हैं?
1: देखिए, दो बातें होती है। एक तो होता है कि आप विविधीकरण करते हैं कि आप चलो आप एक जगह से तेल ना लेकर के आप चार जगह से और तेल लेते हैं
0: जी।
1: और हमारे लिए ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए केवल ब्रेंट का प्राइस नहीं होता, हम जिसको कहते हैं इंडियन बास्केट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के जो स्रोत हैं वो शामिल होते हैं। तो अभी की स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो कुछ घटना चल रही है, जो वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें एक रूस का रास्ता थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टैरिफ ज़्यादा देना पड़े। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि जब जयशंकर साहब की रवियो साहब से बातचीत हुई उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और यूएस की ओर से, अमेरिका की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि राष्ट्रपति के पास वो विशेषाधिकार है कि किसी एक देश के प्रति यदि वो कुछ कमी या रियायत दे सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बातचीत का सार्थक नतीजा निकलेगा और हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितनी हम आशंकित हैं।
0: नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश जी, कार्यक्रम में अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो मैम, नमस्ते सर को। नमस्ते, मैं आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ। मैंने सर, मेरा सवाल ये है, जैसे मैं 29 एज है मेरी और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है अभी, जैसे हमारी एफडी ब्रेक होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, तो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट, तो हम किस, कौन हमें गाइड करेगा, कैसे मतलब हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन बता पाएगा हमारे को अच्छी मतलब नॉलेज उसके लिए?
1: आकाश, मेरी एक सलाह है कि अगर आपको शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो शेयर बाजार ना जाएं। बाजार रातों रात आपको एक, जैसे कहते हैं ना, क्या एक आपको निवेशक नहीं बना सकता है। तो आपके लिए अभी बेहतर यह है कि अभी थोड़ा समय इंतज़ार करिए, पहले समझिए बाजार को। बहुत सारे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोत हैं, सेबी के कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, वहाँ पे आप समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें। अभी के समय में मेरी सलाह है ना जाएं, बेहतर होगा।
0: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके अंतर्गत ₹2000 तक के UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं लगेगा। हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारियों के लिए प्रतिशत के बजाय एक समान यानी फ्लैट MDR लागू होगा।
3: Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for a greater adoption of technology and innovation.
0: बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए
1: धन्यवाद।
3: थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स ईरान्स 7-day प्रपोजल टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इंडियन स्टॉक मार्केट्स रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ बेयर्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव वीक एंड वॉल स्ट्रीट रैप्स अप वीक विद नोटेबल गेन्स। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। टिल टुमारो, गुड बाय।
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी

0: दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एनके प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसी नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तम्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और लावन संथल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Election Commission today said that booth-level officers or BLOs will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision or SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI net platform. The decision was taken during a meeting held by the Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by the Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The Commission also said that if a hearing is required, the elector may authorize any adult member of their family to appear on their behalf. SIR has already been completed in 20 states and UTs, including Bihar and West Bengal. The Commission reiterated that the order for the SIR issued for all the states and UTs with the unanimous approval of the Commission. The Commission said that any person

0: बताया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केरलम कांग्रेस ने माना है कि एसआईआर उनकी जीत का एक कारण था, क्योंकि इस प्रक्रिया से उन फर्जी मतदाताओं के नाम हटा दिए गए जिन्होंने अवैध रूप से पंजीकरण कराया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स के बढ़ते योगदान का जिक्र किया और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों को सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि तक पहुंचाने का आह्वान किया। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ आज कच्छ जिले के दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले ई मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से देश भर में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक वर्षों से समुद्री क्षेत्र में गुजरात की ऐतिहासिक भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। The Election Commission today said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The decision was taken during a meeting held by Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The BJP has condemned the allegations levelled by opposition parties, particularly the Congress, against the Election Commission on SIR as extremely unfortunate. Addressing a press conference in New Delhi today, senior BJP leader Ravishankar Prasad said, "The Election Commission has issued a press note stating that all decisions related to the Special Intensive Revision SIR were taken with the consent of the Chief Election Commissioner and both election commissioners." Mr. Prasad welcomed the statement issued by the Election Commission. Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah inaugurated several developmental initiatives under the auspices of the National Cooperative Consumers Federation of India, NCCF, at Kundara near Kollam in Kerala, aimed at ensuring women's participation in the cooperative sector and strengthening women empowerment. The minister inaugurated the commercial distribution of quality Bharat Atta and Bharat Rice at subsidized

0: বলবেন আপনি, শুনবো আমরা, শুনছেন আপনার কথা। আপনার কথা 100.1 FM গোল্ডে, আপনার কথা 100.1 FM গোল্ডে। গানে কথায় গোল্ডেন সময়, আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড, 100.1 FM গোল্ড, FM গোল্ড।
1: টেলিফোনে কে রয়েছেন তার মতামত শুনে নিয়ে আজকের মতো অন্তত।
2: হ্যালো,
1: হ্যালো,
2: বলুন।
3: ব্যাপারটা হলো, সবাই তো কাজে ব্যস্ত থাকে, এখন টেলিফোনটা করে তার চিন্তা করে কি সে এখন কি আছে কিনা, টেলিফোনটা ধরার মতো অবস্থায় আছে কিনা, এই দিকে করতে হবে। যদি তা না করে এবং মোবাইলে না পায়, কিছু ধারণা করলে হবে না।
2: ধন্যবাদ,
1: অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
2: এবারে হয়তো আজকের দিনের হয়তো না শেষ মেসেজ, বিশ্বজিৎ কর পড়ছে, বিশ্বজিৎ দাস। ফোন না ধরা মানেই সর্বক্ষেত্রে উপেক্ষা নয়, অনেক ক্ষেত্রে সত্যি বহুজন ব্যস্ত রয়। কোনো কোনো সময় তো রিংটোন যায় না শোনা, পারিপার্শ্বিক আওয়াজে অদ্ভুত এক যাতনা, ট্রেনে বাসে বিভৎস ভিড়ে ফোন ধরার নেই উপায়। তবে ফোন যিনি করেন পরিস্থিতি তাকে ভাবায়, অনভিপ্রেত এমন ঘটনায় চিন্তা হয় একরাশ, ইচ্ছাকৃত ফোন না ধরা অনেকেরই বদভ্যাস। বোড়াল মেন্ডট করিয়া, বিশ্বজিৎ কর। আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম, ফোন না ধরা মানেই কি উপেক্ষা করা, এর উত্তর কী হবে আমরা জানি না। আপনারা তাই উত্তর নিয়েই আলোচনা করলেন, নিজেদের মতামত দিলেন। এখন এই পর্ব থেকে আমি এবং শ্যামলিদি আমরা দুজনে একটু ছুটি নিই, আবার ফিরে আসবো আপনাদের কাছে। তবে তখন থাকবেন, কারণ অনুষঙ্গে থাকবে দুর্গাপুজো।
4: নমস্কার, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता, भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
5: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है, तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
6: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
4: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
7: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
4: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
7: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना, और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
5: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
8: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
9: PM नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
5: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों

0: के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
3: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
4: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. Chief Justice of India, Justice Suryakant, today inaugurated the country's first Victim Rights Centre in Patna. The first of its kind Victim Rights Centre in the country is established on the premises of the Bihar State Legal Services Authority. Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah inaugurated several development initiatives under the auspices of the National Cooperative Consumers Federation of India, NCCF, at Kundra near Kollam in Kerala today. These initiatives aim to ensure women's participation in the cooperative sector and strengthen women empowerment. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, PMO, Information Broadcasting Ministry. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Finance Ministry has announced that all public sector banks and regional rural banks will remain open tomorrow for the convenience of the customers. The ministry said that this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from the 28th to the 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays of 26th and 27th September. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar is addressing the high-level session of the 81st United Nations General Assembly, UNGA, in New York tonight. Addressing the session, Dr. Jayashankar said that there must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism and our right to defend our

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े हर फैसले को पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए